0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: आमाहोरो
1: आमाहोरो नशीमा
0: नींदे तू यागु तू आकुयुरी ही ही
1: आमो बुगाने
0: अल्लाह मनुवानी वाचा टेलीफोने का चेक मुगोरा पोले साना मेरे सिमुरी कुमरों देरो मुरंगो मुखाओ बरन हाकुंजी नुकी गुम्या आहानी हिंगी यो वाइस अफ़ये उरकुरायुं